छोड़ी तकरारों में, रोका टोकी वाले यारों में, छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

सिदक सबर की लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, ऐथों तक आखिया कि तुहानूं पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ये। बड़ी कोशिश की थी इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौन वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे। आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, सूबे नू क्या पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे काकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा ए नवाब साहब सप दे बच्चे हमेशा सप ही हुंदे हन, इन्हां दा मूंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विचण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विचणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तन उन्हां दी सिखी तन बख्शिश अमृत दी दात छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨਕਨਤੀ ਲਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 4 8 9 3 5।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

दोस्तों, मैं कुलदीप माणक ते मेरा बेटा जोतवीर माणक, असी दोनों ने अमन हेर दिखाता एक गाना गाया, एक गीत जड़ा है एक गीत।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्ला नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: टांग टांग।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744-62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer? Or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed. Indeed.

कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा

ते नरक है महफिल तेरी जिथे दिन अंधेर है ते चंद की चाड़ेगा तू जन्नत ते जाके साकिया ते अज ना किस सर्व जीवन।

0: मोहसिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: छड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे। नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा, और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ोकात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने

डाली है वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 6 दफ़ा 4 मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

ओए यारा दे यारा तिखी तलवारा ओ खंडे दी तारा यारी पिछे मरदे आ हिक्का तान खड़दे आ किसे तो नहीं डरदे कल्ले रब कोलो डरदे आ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हुए
3: खान।
4: हम शरीफ क्या हुए,
3: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश।
3: देखो मैं हूँ कहाँ।
5: आवेज खान।

0: Assalamu alaikum and namaste. Khush aamadeed. Welcome to Sunrise Radio 103.2 FM. Aapka host yahan bhi hazir hai. Mere naam Parveza, I'm here till 11 PM. Aur aap sabke naam Runge Mehfil ka program hai. 01274306666. And today is amazing day. As you know, today is Wednesday 15th of July 2026. The weather has been such a lovely romantic mushroom. Kahan pe ja rahe hain, kahan pe aa rahe hain? What is your beautiful plan for this beautiful evening? Good evening to you. On all those beautiful callers flashing in as well, Alana chamak rahi hain, damak rahi hain, aur sab doston ke main shukr guzar hoon, mamnoon hoon aapka ke aap hamara saath de rahe hain. And you're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire, DB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Bradford, Manchester, and not forgetting East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, or Milton Keynes. Me, our program is going to be heard. Bob, thank you for your support. And you can also download the Sunrise app on Apple Play Store, on Google Play Store, and not forgetting www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. And that is all about. And Bob, thank you for your support. And here, you are shining. Your flashes are happening. And we are feeling good that you are with us. And a little while later, I will call you all by name. And further, give. भी होंगे आपके लिए और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए होंगे, आपके जो दोस्त बाबे अजीज हैं उनके लिए गीत होंगे फिलहाल. और यहां पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत कॉल्स आ रहे हैं. बहुत खूबसूरत और कॉल्स आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और यहां पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर. एंजॉय
1: सनराइज रेडियो. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

ऑलराइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर रेडियो बॉबी। शुक्रिया सब दोस्तों का जो मुझे फोन कर रहे हैं और लाइनें काफी चमक रही हैं, दमर गई हैं और यहाँ पे रौनक हो रही हो चुकी है कि आप सब हमें याद करें। बॉबी शुक्रिया आपका भी। आज सबसे पहले कॉल आई है हमारे अब्दुल कयूम साहब फ्राजिंग और से, बॉबी शुक्रिया आपके, आपने हमें याद किया, बॉबी शुक्रिया आपका भी। वाजिद भाई बॉबी शुक्रिया आपका भी। अतीका साहब हैं, बॉबी शुक्रिया आपका भी। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना क्योंकि आपने सबको दावत दी है, माशाल्लाह वो आएंगे और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ ये रहे चौधरी फरियाद साहब हैं, अली भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी। आप हमारा साथ दे रहे थे कि वेरी मच, फ़ोन करने का और अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं गीत में पेश करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, अब्दुल कयूम साहब फ्राजिंग और ये आपके लिए गया और आपके दोस्तों के लिए होगा। और आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे। वाजिद भाई आपके लिए हम दुआगो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, इंजॉय द ट्रैक।

राइट दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और अब्दुल कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा फ़ोन किया, वो आपकी कॉल मिस हो चुकी है और जब भी आपको मौका मिले आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने गीत पेश करना चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपके लिए और हमारी भाभी जान हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन के वो इन्जॉय करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे भाभी जान घर चले गई हैं और हॉस्पिटल से माशाल्लाह वो ठीक हो चुकी हैं और हमारी दुआ जो ना कबूल हो चुकी है, अब माशाल्लाह माशाल्लाह सब दोस्तों ने दुआएँ की हैं हमारे भाभी जान के लिए और बहुत अच्छा लगा। ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ भाभी जान, ये गीत आपके लिए गया चौधरी फरियाज साहब की तरफ से होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा आप सब सुनने वालों के लिए गीत होगा, नशीर साहिबा ये गीत आपके लिए भी होगा, शाह परी जी ये गीत आपके लिए गया, अतिका साहिबा हैं ये गीत आपके लिए गया, चौधरी फरियाज साहब ने रिक्वेस्ट की है आपके लिए और सब सुनने वालों के लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत होगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे। और अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग गर्ल्स हैं ये गीत आपके लिए भी होगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि वाजिद भाई आपके लिए भी होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा फ़ोन करने और ज़रा अफज़ाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शादाबाद रखे और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली लवली लवली दुआएँ और हमेशा हमारे लिए दुआएँ करते हैं और आज भी हम आपने हमारे लिए दुआएँ की हैं वो बहुत अच्छा लगा। राना नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और यही गीत मैं पेश करूंगा, रेखा जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके लिए गीत होगा और स्पेशली ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, अतिका साहिबा हैं ये गीत आपके लिए गा और आपकी जो सखी शैली हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे, थैंक यू वेरी मच जाकर खैर कि आपने हमें याद किया और फ़ोन करने का दो का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपने भी हमारे चौधरी फरियाज साहब को सलाम दुआ की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने वो प्रोग्राम सुन रहे, हमारे भाभी जान भी प्रोग्राम सुन रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं। और यही गीत मैं पेश करूंगा डॉक्टर मलिक साहब और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे इस गीत को, बहुत खूबसूरत गीत है, मेरा फेवरेट गीत है शौकत भाई, ये गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बड़ा ही नायाब गीत है और आपने सबने रिल मिल के ये इंजॉय करना है और ये वो गीत है जो पेश करें जाए शौकत भाई, ये गीत आपके लिए।

Wow, what an amazing tune. That was one of my favorite tunes. और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Moving on to another beautiful track. और ये मैं गीत में पेश करने जा रहा हूँ. वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए होगा. और चौधरी आश्रम डॉक्टर साहब हैं आपके लिए, तारिक भट्ट जी हैं, जंगीर साहब हैं आपके लिए, बाबा जानी हैं, मोहम्मद इब्राहिम हैं, शौकत साहब हैं, और ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, और पापा शफीक हैं, और यसर पट्टी हैं, यसीन महमूद हैं, महमूद ज़ुबैर हैं, भाई शफीउल्ला हैं, और चौधरी शबीर साहब हैं. और ये गीत आपके लिए होगा. वाजिब भाई आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए भी होगा. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फोन करने का, उजरा अफजाई करने का. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. और ये आपके दोस्तों के नाम हैं, और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और यही गीत मैं पेश करूँगा. हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, हमारा साथ दे रहे हैं चौधरी फरियाज साहब, हमारा साथ दे रहे हैं. उनके लिए होगा गीत होगा, और उनके सब सुनने वालों के लिए गीत होगा. स्पेशली उन्होंने कहा कि जो भी मुझे जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं उनके लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून है. और ये जो गीत है बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़ा ही खूबसूरत नायाब गीत है. मुझे उम्मीद है यकीन है ये गीत आप इंजॉय करेंगे. और क्योंकि हमेशा मैं गाना ये पेश करता हूँ आप सब सुनने वालों के लिए, और ये भी गीत होगा मोहम्मद रफ़ी साहब, ये गीत आपके लिए होगा, आपके दोस्तों के नाम होगा, और मुझे उम्मीद है यकीन है आप भी इंजॉय करेंगे. बड़ा ही खूबसूरत गीत है. और हमारे मोहतरम भाई हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और मैनचेस्टर में. और ये गीत आपके लिए होगा. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून एज वेल. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ सब सुनने वाले के खामोश लिसनर्स, नो फॉरगेटिंग ऑल चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल, और स्पेशली चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

वाओ व्हाट अ अमेजिंग ट्यून है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी खुश नसीबी है कि माशाल्लाह क्या कहने और चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर भी सुन रहे हैं प्रोग्राम को और बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल भाग भाग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बहार आ गई। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया और बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी एनो, खुश आमदीद आपके लिए भी। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। और वाजिद भाई विशिंग यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और स्पेशली हमारे मुर्शिद की तरफ से। शकील साहब ने हमें याद किया है और उन्होंने कहा कि उनके लिए वाजिद के भाई के लिए हैप्पी विश कर दें, हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन मुबारक हो, और हमारी तरफ से भी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वाजिद भाई। वैसे आपकी कब जन्मदिन है? मेरे ख्याल में 22nd को है, और मेरे ख्याल में 22nd of July है, और आपने मुझे बताना है कि कब आपका जन्मदिन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए भी गीत पेश करने हैं और पूरा प्रोग्राम मैंने आपके लिए पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से भी आपको भी विश करते हैं, आप ही अपनी बर्थडे और हमेशा ही खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। नदीम मंसूर साहब हैं, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। अतिका साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा फ़ोन किया और हौसला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद करें। रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये मैं गीत मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद यकीन कि, और हमारे GIK गंजफर अखलाक खान हैं जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने स्पेशली सलाम पेश किया है हमारे शकील साहब को, माशाल्लाह माशाल्लाह। राना नवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने भी सब सुनने वालों को सलाम पेश किया है, तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम, और आपका भी शुक्रिया अदा करें कि आप ही प्रोग्राम सुन रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का कि आप आए, बहार आ गई है और आपको भी हम सुनेंगे, आपकी आवाज़ में गाना भी सुनेंगे, आपकी आवाज़ में शेर शायरी भी हम सुनेंगे, देखते हैं क्या होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आपका भी, थैंक यू वेरी मच। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। और इफ़ यू ड्राइविंग, ड्राइव विद केयर एंड वेयर आर यू, और कहाँ पर पार्टी हो रही है आज, और कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, वट इज़ योर बी प्लान फॉर बी फॉर इवनिंग। और आज मैं एक खुद पार्टी छोड़ के आऊँ, गार्डन पार्टी हो रही थी वहाँ पर ब्रैफर्ड में, और मैंने छोड़ के आऊँ क्योंकि मेरे जो मेरी फैमिली हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाके हम खुद इन्जॉय करें, उनके साथ बह के इन्जॉय करें, प्रोग्राम ही करें, और उनके जो खूबसूरत शायरी करते हैं, खूबसूरत जो उनकी आवाज़ है, ओए होए होए हो, फीडबैक हैज़ बीन वंडरफुल फ्रॉम द लास्ट प्रोग्राम, सब ने इन्जॉय किया प्रोग्राम को, हौसला अफजाई की है, दुआएँ दी हैं, और फर्दन फर्दन सबका शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो आप आए और बाहर आ गए और ये गीत आपके लिए, इन्जॉय।

0: Right, that was one of my favorite tune, or Shukran by Bobo Shukriya. That was your favorite tune as well, Bobo Shukriya. Aapka bhi aapne hamara saath de rahe hain, aur Sayed Ehsan ji, Bobo Shukriya, aapne sab sunne walon ko salam pesh kiya hai, aur especially jo sunne wale hain, aur hamare Shakir sahab ko aapne salam pesh kiya hai, Rana Naveed sahab ko salam pesh kar rahe hain, aur Abdul Qayyum sahab aapne salam pesh kiya hai, aur Atika sahib ko, aur Gidan bhai, Smitra ji, aur sab unki jo team hai, unke liye dua kiya hai, aur Mohammad Rafi sahab ko bhi dua salam pesh kiya hai, aur bahut bahut shukriya Nadeem sahab को भी पेश कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सब सुनने वालों का आपने कहा, और बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और आने वाला गीत आपके लिए भी होगा, एंड थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे हमारे जो वफादार हैं, हमारा जो पेट है बॉक्सर, हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे. ये हमारा बॉक्सर है, और यहाँ पे जूली है, मानो है, रूबी है, और ब्रूनो है जो हमारा साथ दे रहे हैं. और क्या कहने, क्या कहने इनका, हाय हाय हाय हाय, सदके जावा, इतनी खूबसूरत है देखो. और जो हमारे ब्रूनो हैं, ब्रूनो जी क्या कर रहे हैं यार, क्यों यहाँ पे भाग रहे होंगे स्टूडियो में, ये मस्ती कर रहे हैं, ये हमारे साथ आज मस्ती में मौज में क्या करें. और ब्रूनो इज मस्टिंग अबाउट इन द स्टूडियो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी गर्मी है बाहर, तो मैंने सोचा यहाँ पर ठंडा ठंडी है, ए सी चल रही है, एयर कंडीशन चल रही है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम भी है, और यहाँ पर ठंडा ठंडी ठंडी हवा आ रही है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 45 minutes past the 8 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the power is gone. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे फ्लैश बैक होगा, और क्या गीत होगा, जबरदस्त गीत होगा, बड़ा ही प्यारा गीत होगा. मुझे उम्मीद है, यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे. Sunrise and music.
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा काम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक और बहुत बहुत शुक्रिया और उजलाफ जाहिर करने का राना नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और क्या कहने जी, आप आ गए और छा गए जी, बड़े दिन हो गए आपसे गुफ्तगू करते हुए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका भी प्यार मोहब्बत है, चाहत है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच कि आपका भी प्यार है कि हमेशा ही आपका इंतज़ार करते हैं मेरे भाई। और चौधरी फरियाद साहब हमेशा ही आपको पता है हाल वाल जो पूछते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। राना नवीद साहब ये गीत आपके लिए गया, नदीम मंसूर साहब आपके लिए, चौधरी फरियाद साहब आपके लिए होगा, डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए भी होगा, अतीका साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब फ्राजिंग से गीत आपके लिए गया, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा, सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, वाजिद भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और शकील साहब हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अली भाई हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्टनर हैं उन सब के लिए होगा। और किसी की लाइन ड्रॉप हो चुकी है तो आई डू अपोलोजाइज टू देम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है, दिस ट्रक विल टेक मी टू द नैनाकक न्यूज़, और देखते हैं कि दुनिया में क्या होगा और अल्लाह खैरी करे। और हमेशा हम दुआगो हैं और आप सबके लिए दुआगो हैं, और आज आपको पता है कि बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए और मेरे लिए, बहुत ही ख़ास दिन है आज और ख़ास दिन है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। टुडे इज़ वेरी वेरी वेरी क्रूशल डे टुडे फॉर मी एंड माई सेल्फ एंड ऑल दोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉलर्स, उनके लिए भी है। और अब क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, क्या है ना, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। और क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है और यहाँ पे पार्टी हो रही है ब्रैडफोर्ड में, पूरी दुनिया में पार्टी हो रही है आज, यूके में, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में पार्टी हो रही है। और क्या कहेंगे, देखो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके लिए, आपके प्रोग्राम करने के लिए, आपके सबके लिए, माशाल्लाह मैं आया हूँ आपके, स्पेशली आपके लिए आया हूँ, अदरवाइज मैं भी पार्टी कर सकता था और मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि पार्टी जो है ना आपके साथ में पार्टी मनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और जो मुझे स्माइलीज आ रहे हैं, मुझे जो फूल की वो खुशबू आ रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके, जो ड्राइव कर रहे हैं ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, वो ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर ट्यून इन टू सनराइज रेडियो, योर नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। एंड ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बातें क्यों कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि ये गीत जो ना 3-4 मिनट का गीत है, तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी बात कर लूँगा कि आपके साथ ये गाना जब मुकम्मल हो जाएगा, अदरवाइज जो गाना जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे एक और गाना लगाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि वो गाना फिर वो बीच में मुझे रोकना पड़ेगा, तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ और अच्छी बात भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा समझ के करना चाहिए, जो भी करेंगे आप समझ के करेंगे, ठीक है। एनीवे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बच गए क्या है ना, आप सब बच गए, वाह जी वाह वाह वाह वाह जी, बच गए हैं, देखते हैं क्या होता है, और फिलहाल तो बचे हुए हैं और देखते हैं क्या होगा, और अल्लाह हैर ही करे, और क्या करेंगे देखते हैं क्या होगा। और ये गीत है, एंजॉय द ट्रैक।

0: चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
1: My time in the studio is 10 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the power of his Khan. Bahut bahut shukriya aap sab doston ka. Aur I do apologize, I think sahab aapki line drop ho chuki hai aur jab bhi aapko mauka mile aap dobara phone kar sakte hain. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur yahan pe hamara saath de rahe hamare surprise aapke liye. Aapke liye surprise yahan pe kaun hai?

वही ख्वाब दिन के मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद में झंझना

0: धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की।
1: वाह,
0: चलो हथली के जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कब कपाती तो होंगी।
1: वाह,
0: कलम हाथ से

पढ़ते तो होंगे जमी पर दुपट्टा लटकता तो होगा कभी सुबह तो शाम

0: बहुत
1: बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया और बड़ा ही खूबसूरत, और क्या आवाज़ आपने पाई, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी है। और ये वो गीत था, हाय हाय हाय,
2: बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी।
1: कमाल कर दिए मेरे भाई, कमाल कर दिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत।
2: मुझे अपने ख्वाबों के बाहों में पाकर,
1: हाय हाय हाय,

कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल। और जो आपकी संडे की गैर हाजिरी लगी हुई है ना, एक गाना आपने सुनाना है और एक और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैंने अजान भी पेश करनी है, तो आपको यहाँ पे होल्ड करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्याल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। और हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम दिल अजीज़, हमारे मोहसिन, और जितनी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँगा, एम खान जी हैं वो भी आगे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अजान भी पेश करनी है और पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ पर अजान शो नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम खुद पेश कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम पे नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वो मेरा भाई भूल गया है, तो कोई बात नहीं, हाँ मैं हूँ ना उसके लिए यहाँ पे, और इंशाल्लाह चल हम खुद यहाँ पे पेश करेंगे, यहाँ पे मगरिब की अजान पेश करूँगा थोड़ी देर के बाद। और आपको पता है कि यहाँ पर माशाल्लाह इंग्लैंड जो ना, वो इंग्लैंड दे आर विनिंग वन गोल, और उन्होंने एक गोल स्कोर किया है, आर दे विनिंग वन नील, दैट इज अर्जेंटीना नील ऑन इंग्लैंड आर वन, ठीक है, ऑन दैट इज खूबसूरती है। आप सब दुआ करें कि इंग्लैंड ने होपफुली शुड गो थ्रू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल ऑफ द कंट्री इज़ वेल एंड फॉर होल ऑफ ओज इज़ वेल। और क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो इंग्लैंड तो वैसे भी हमारी कंट्री है, तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और इंग्लैंड जो ना एक गोल से विन हो चुकी है, और वेल विन हो रही है फिलहाल, वो खेल रहे हैं और बड़ा ही अच्छा खेल रहे हैं, कि मैंने सोचा कि वाह जी वाह क्या बात है। एनीवे यहाँ पे हमने अजान पेश करनी है, 9:35 पे अजान पेश करूँगा, वो बहुत ही ज़रूरी होगी हमारे लिए और सब सुनने वाले के लिए। और जो फुटबॉल के शौकीन हैं, आपको पता है कि फ़िलहाल अजान भी आने वाली है मगरिब की, और वो भी अपनी अपने टाइम टेबल अदा करें, और सबके लिए दुआ करें, जो बीमार हैं खुशखुशी दुआ करें उनके लिए, वाजिद भाई हैं उनके लिए खुशखुशी दुआ करनी है, हमारे मुर्शिद हैं उनके लिए दुआ करें, और हमारे एम खान जी हैं उनके लिए सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे उनको भी। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ जो भी काम करता हूँ टाइम के साथ करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कोई गिल्ला शिकवा नहीं होना चाहिए। एनी वे यहाँ पे यू लिसन टू रेडियो 100.6 FM 103.2 FM क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, DAB plus Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, और ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अर्किंगटन, मिंटन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सुन रेडियो ऐप ऑन एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर एंड www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio। दैट इज़ ऑल अबाउट, एक मिनट रह गया अजान के लिए, और अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल के देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे। मगरिब की अजान होगी अभी, और ब्रैडफोर्ड में UK में, और मेरे लिए भी दुआ करनी है और सब सुनने वालों के लिए दुआ करनी, जो स्पेशली जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। ये मेरे लिए एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ आपके लिए, प्लीज़ दुआ करें और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एज़ वेल, और ज़िंदगी को इंजॉय करें। ज़िंदगी 4 दिन का मेला है, इस ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बिलीव करें, ज़िंदगी इज़ खूबसूरत है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं और कैसे दुनिया को इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमने अजान पेश करनी है, टू द पॉइंट, 9:35, हियर वी गो।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे बड़े प्यार के साथ बड़े इत्राम के साथ मैं वेलकम करता हूँ और हमारे उस्ताद मोहतरम एम खान जी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, उन्होंने होल्ड किया हुआ और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजूर, वालेकुम
1: सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आपको जितने शायरा या शायर मुझसे पहले अपना कलाम पेश कर चुके हैं या बाद में मुझसे आएंगे, सबको उम्र खिज़र सेहत वाली जिंदगी।
0: आमीन आमीन आमीन सुम आमीन हक आमीन।
1: बाद इरशाद फरमाते हैं।
0: जी जी इरशाद।
1: बेकरार करता तुझे गम साए सितारा,
0: वाह
1: तेरे निशान में डाला मेरे नगमाए,
0: वाह
1: मेरी खाक पे शुक्र, मेरी खाक पे शुक्र है जो नहा था एक ही शरारा, नजर आएगा उसी को जहाने दोशो फर्दा।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: ये आ गई मयसर मेरी शोखिये नजारा।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने।
1: आगे हमारा इकबाल के बाद हुजूर मियां साहब का,
0: मियां साहब का कमाल। जी जी जी माशाल्लाह,
1: आपने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया है।
0: जी जी इरशाद
1: पाते हैं। कतरे एक मनी दे ताई की कुछ जोबन देंदा,
0: वाह वाह वाह।
1: पानी उते सूत लिखे हिकमत अजब करेंदा,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: उस इस सूरत विचो सीरत पावे पहले सीरत तक दे।
0: हाँ हाँ, इसे दोबारा पढ़े जी, दोबारा, बहुत खूबसूरत, क्या कहने, वाह।
1: इस सूरत विच सीरत पावे ऐले बसीरत तकदे,
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह।
1: इन्हीं लोग असमतर पाई कदर पुछा न सकदे,
0: हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब।
1: वटे दे विच लाल टिकांदा जानन कीमत पांदे,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह।
1: दे विच लाल टिकांदा
0: जी वाह वाह,
1: जानन कीमत पांदे
0: जी।
1: सारी शाखों वेख निकाले,
0: बहुत खूब।
1: फुल फल रंग रंगांदे, रंग रंगिया रंग रंग रंगांदे,
0: रंग रंगांदे, वाह जी वाह, क्या कहने।
1: सिप्पा अंदर मोती करता रख के कतरा पानी,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: शिकमा विचों बाहर शिकमा विचों बाहर आने, अलामा इकबाल और मियां साहब का मुद्दा यही है।
0: जी जी।
1: कि इंसान अपनी जिंदगी को पहचाने और अपनी जिंदगी के रहने के तो तरीके गाइडिंग लाइन को पहचान जाए।
0: जी।
1: तो एक आदमी था
0: जी जी
1: हमारे कश्मीर का,
0: जी जी,
1: तो पंजाब के साइड पर एक आदमी एक दानिश्वर के पास गया था। वो दानिश्वर बैठा हुआ था, जो सवाल करने वाला खड़ा था।
0: जी जी।
1: पूछा, भाई क्या सवाल करना चाहता है? उसने कहा, हजरत जी कोई सवाल नहीं, एक ही सवाल करना चाहना, ऐसी आई कोई मुंह दुआ कटो नहीं, अल्लाह इंसान बना छोड़ा।
0: हाय हाय हाय, अल्लाह इंसान बना छोड़ा, हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह।
1: हुजूर बैठा या दानिश्वर बैठा हुआ जी खड़ा हो गया।
0: जी जी।
1: आखला ये इतना मुश्किल सवाल किया, इंसान बनाना मेरे बस का रोग नहीं, दुआ कर सकता लेकिन इंसान नु इंसान बनाना,
0: इंसान इस... बड़ी बात है, बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात है, क्या कहने जी, क्या, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें अच्छा लगा। और ये थे हमारे मौजूद मेहमान एम खान जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका जो आए, बहुत बहुत शुक्रिया कि एम खान जी। और यहाँ भी हमने क्या करना है, टाइम चेक करना है।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: The time in the studio is 43 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहां हमें हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जो गाना आपने गुनगुनाया, क्या खूबसूरत गीत गुनगुनाया आपने, बड़ा ही प्यारा गीत था, बड़ा ही खूबसूरत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी माइये है।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
1: एक बारी मिल सोनिया, तेरा मिलना जरूरी है।
0: जरूरी है। हाय हाय हाय, वाह वाह,
1: आस भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, क्या कहने, वाह।
1: एक बारी मिल सोनिया, तेरा मिलना जरूरी है।
0: वाह।
1: याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है। एक बारी मिल सोनिया, तेरा मिलना जरूरी है। याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है। नित याद मैं तेनू करदा, तेरी यादा विच दिल मेरा सड़दा। नित याद मैं तेनू करदा, तेरी यादा विच दिल मेरा सड़दा। एक ये जिंद साड़ी बस जिस्म दी दूरी है। याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है। एक बारी मिल सोने आ, तेरा मिलना जरूरी है। याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है।
0: क्या कहने।
1: मेरा इश्क हकीकी है जाना, तू है दिल में तेरा दीवाना। मेरा इश्क हकीकी है जाना, तू है दिल मैं तेरा दीवाना। सजना मोहब्बत मेरी तेरे नाल ही पूरी है। सजना मोहब्बत मेरी तेरे नाल ही पूरी है। याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी है। एक गल दस सोने मैनू, किया कदर नहीं मेरी तेनू। एक

0: दस केड़ी मजबूरी ए एक बार मिल सोने तेरा मिलना जरूरी है याद भी नहीं करदा दस केड़ी मजबूरी
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए और बड़ा ही खूबसूरत मैं सुनाया बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही बड़े दिनों के बाद ये मैंने सुना है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मैयर सुनाया हमें और एक बुरी खबर भी है कि यहाँ पे वन ऑल हो चुका है फुटबॉल का है और इंग्लैंड वन और अर्जेंटीना वन इज़ वेल एक एक गोल हो चुका है मेरे भाई क्या करेंगे और क्या करेंगे चलो कोई बात नहीं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं
0: जो अल्लाह को मंजूर हो
1: गया नहीं क्या सही है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और उन अपनी नींद पूरी करें बड़ी शुक्रिया थैंक यू मेहरबानी इंशाल्लाह फिर आप दोबारा मुलाकात होगी आपके संडे ठीक है ना बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया मेरे का अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और ये थे हमारे नदीम मंसूर साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गुनगुनाया मैं गुनगुनाया बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमें अच्छा लगा और यस वंस अगेन इट्स वन ऑल विद अर्जेंटीना and not forgetting bahut bahut shukriya inka bhi aur bahut bahut shukriya england won and argentina won as well won all aur ek ek ho gaya hai aur bahut bahut shukriya aapka ke aap aaye aur bahut bahut shukriya aapka bhi aur yahan pe hamara saath de rahe atika sahiba hain aur tanmeen akhtar ji bahut bahut shukriya aapka bhi aap hamara saath de rahe thank you very much aur aapka bhi shukriya ada karta hu aur aapke saath bhi hum kalam honge aur next hour mein bahut bahut shukriya aapka bhi aur yahan pe kyunki हम इनसे भी बात करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आई हैं बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हम वेलकम कहेंगे जी आई कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और अतीका साहब हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: कैसी थी विद्या ठीक ठाक ठीक है आपकी
2: जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और आपकी पहले आवर बल भाई यही पहला आवर है और आप पहले जो फ़ोन किया था वो लाइन ड्रॉप हो चुकी थी तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माइंड नहीं किया और आपने दोबारा फ़ोन कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका
2: जी बस हो जाता है
1: हो जाता है चलो चलो कोई बात नहीं
2: कोई बात नहीं तो मिल गई अभी
1: अभी थोड़ा जो टाइम है इस आवर का और आपने जो शायरी करनी है तो आप थोड़ा जो होल्ड करेंगे तो नेक्स्ट आवर में मैं आपको लेके जाऊंगा तो वहाँ पे आपने आराम से अपनी शायरी को करें और नशर करें तो हमें भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो आप होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी तो सबको सलाम पेश कर दें जो आपने अपनी जो सखी खेली उनको पता लगे कि आप आ चुकी हैं माशाल्लाह तो उनका भी थोड़ा सा उजला हो जाए ना उनके लिए भी
2: जी सबको सलाम अर्ज करते हैं
1: जी जी
2: और सबसे पहले तो जो आज भी आपने जो सॉन्ग लगाए थे
1: जी जी
2: बहुत ही गोल्डन
1: गोल्डन गोल्डन गोल्डन क्या कहने वाजी वा
2: तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग थे
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी
2: तो आपने मौका नहीं दिया कि कोई फरमाइश कर सके
1: जी जी
2: सॉन्ग इतने खूबसूरत थे
1: जी
2: तो फरमाइश करने का कोई
1: चांस ही नहीं है कोई मकसद ही नहीं है ना जी
2: जी बहुत शुक्रिया इतने प्यारे सॉन्ग सुनाने का और इस रंगे महफिल के सब सितारे
1: जी
2: को सलाम
1: वालेकुम सलाम
2: चांद को भी सलाम
1: जी
2: जो हमारी सुमित्रा जी हैं सखी के
1: ओ माय गॉड दो गोल हो चुके हैं जी अभी दो अर्जेंटीना और एक इंग्लैंड और ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है
2: ये गेम है
1: ये गेम है और गिदन भाई और हमारी पापी जान ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है और दो गोल हो चुके हैं देखो चिन चंद मिनट में ये दो गोल हो चुके हैं और ये क्या देखो इंग्लैंड इतना खूबसूरत खेल रहे थे और इतना खूबसूरत है उन्होंने पहला गोल किया था और अभी देखो दो गोल हो चुके हैं और 2-1 हो चुके हैं और तरमीद अख्तर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी जी जी,
2: जी, जी। तो सुमित्रा जी और गिदर भाई को बहुत बहुत नमस्ते
1: जी
2: तो वो भी आज
1: वो कह रहे हैं कि हमने फुटबॉल देखना है फुटबॉल देख रहे हैं आप देखो फुटबॉल देखो और देखो और अर्जेंटीना जो है ना वो विन हो चुकी है थोड़ा सा टाइम रह गया पीछे बाकी क्या टाइम रह गया थोड़ा सा टाइम रह गया तो इसमें हम क्या करेंगे देखो अल्लाह खैर ही करे
2: जो भी अल्लाह को मंजूर होगा
1: हाँ जैसे मैं नदीम मशहूर कह रहे हैं अल्लाह को मंजूर होगा मैंने कहा पूरी दुनिया जो है ना वो परेशान बैठी हुई है पूरी दुनिया जो है ना वो इस चक्कर में है कि यार फुटबॉल हो रहा है आज, इंग्लैंड हो रहा है और अर्जेंटीना खेल रहे, क्योंकि ये जो क्रूशियल मैच था इंग्लैंड के लिए भी और आज अर्जेंटीना के लिए भी, तो इसका मतलब ये हुआ गया कि अल्लाह हैर ही करे कि इंग्लैंड ये ना हो कि आज बाहर हो जाए, ये अपने वापस आ जाए घर में, क्या हाल है, अल्लाह रहम करेगा, देखते हैं क्या होता है।
2: ये हार जीत तो होती है, एक हारता एक जीतता है, बस जो अच्छा खेलेगा वो जीत।
1: हाँ ये तो हार तो जीत होती है, जो जो जो शिदाई हैं जो फुटबॉल के उनसे पूछे ना, गिदन भाई से पूछे ना कि आज क्या हो रहा है, उनसे वो आपको जवाब देंगे।
2: सब घरों में ऐसे ही है,
1: ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है,
2: जो भी होगा देखी जाएगी,
1: जो भी होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। और अभी 5 मिनट रह गए और इस खबर के, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लें या कुछ आपने चंद मिनट में आप किसी को सलाम पेश।
2: जी जी मैं सबको सलाम पेश कर रही हूँ, नौशीन जी हैं, रेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं
1: जी,
2: और चौधरी फराज साहब आए थे, उनकी वाइफ का सुन के बहुत अच्छा लगा
1: जी, माशाल्लाह वो वापस कार आ गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: पाक ने उन्हें सेहत अता
1: फरमाई, आमीन आमीन आमीन
2: जी। तो वो बहुत अच्छी शायरी करके गए,
1: बड़ी खूबसूरत शायरी की है उन्होंने, बड़ी कमाल की शायरी की है,
2: बहुत खूबसूरत हमेशा करते हैं, जवेद मीर साहब हैं, नजीर मंसूर साहब की हमेशा की तरह शायरी भी सुनी और गाने सुने और
1: जी,
2: भी बहुत खूबसूरत,
1: बड़ी खूबसूरत जी,
2: तो बहुत नाइस। और पापा जी हैं, शकील जी हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे
1: जी,
2: सलीम भाई हैं और अब्दुल कयूम साहब है, उनका भी इंतजार है,
1: हाँ वो उनका इंतजार है, वो आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आवर में, और हमारे शकील साहब हैं वो भी आएंगे, हमारे मुर्शिद हैं वो आएंगे नेक्स्ट आवर में, तो वो कुछ ना कुछ धमाका करेंगे डेफिनेटली
2: जी, हमेशा ही करते हैं,
1: हाँ हमेशा ही, वो लूटते हैं महफल को और लूटेंगे
2: जी। दसर कियानी साहब हैं, वाजिद भाई हैं, सजाद पहलवान साहब हैं, सजाद साहब हैं, एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, इंशाल्लाह उनका भी
1: इंतजार होगा जी,
2: आएंगे
1: जी।
2: तारिक भट्ट साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, राहुल जर हुसैन साहब हैं, और आसिफ रियासत साहब हैं
1: जी,
2: और बस सबको सलाम। और
1: और आज हमारा प्रोग्राम सुनने माशाल्लाह राना नवी साहब हैं, वो भी कहने की आएंगे थोड़ी देर के बाद,
2: इंशाल्लाह वो बहुत देर हो गई
1: है उनकी आवाज़ जी, वाकई कोई शक नहीं, कोई शक नहीं जी,
2: इंशाल्लाह वो खूबसूरत शायरी सुनाते हैं हमेशा
1: जी,
2: तो उनका भी वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं वेट करती हूँ
1: जी जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पे हमने गाना थोड़ा पेश करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट आवर में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इस आवर में, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ, आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे यहाँ पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका, और तनवीर साहिबा आपने भी कोशिश कर रही है फ़ोन करने की, बहुत बहुत शुक्रिया, और क्योंकि लाइव कॉल का सिलसिला है तो आपके लिए भी गीत होगा नेक्स्ट आवर में, कोशिश करूँगी आपके लिए भी गाना पेश करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गंजम्फर अखलाक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे भाई, आपने भी कोशिश की है फ़ोन करने की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप नेक्स्ट आवर में फ़ोन करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और तनवीर अख्तर साहब आप भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं क्या करूँगा कि आप ऑन एयर कर दो उनको, क्योंकि हमारी बहुत प्यारी बहन है जी। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: माशाल्लाह कैसी हो मेरी बहन, ठीक है, सही ठीक है आपकी? अल्लाह रहम करसी, अल्लाह के दोस्त में सारे सुनने मैंने, सारे दुनिया सुननी पीने, ठीक है ना, तो तुम अपना सेहत ना ख्याल रखो, अल्लाह पाक की सेहतमंद करे, अल्लाह ताला जिंदगी दे रखो की, आमीन। नेक्स्ट आवर गाना सुना, ठीक है ना, तो तुम सुनिया गाना, तो बड़ी मेहरबानी, अम्मा ठीक ने? दुआ की करो, ठीक है ना, तुम बड़ी मेहरबानी, तुम फोन किया है, हौसला अफजाई करने हो, तुम बड़ी बड़ी मेहरबानी, टाइम कड़ी फोन करने हो, तो पहले तुम नेक्स्ट आवर जो गाना लाश ना हिट ऑफ द आवर, तो वो तुम गाना लाश, ठीक है ना, डॉक्टर जान अगे पिछे, ठीक है ना, तो बड़ी मेहरबानी तुम आए हो, तो बड़ा चंगा लगे, तो अम्मा ने लुक आफ्टर करा करो, ठीक है ना, जी जी माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तो नेक्स्ट आवर तू गाना उसकी, ठीक है, गाना खूबसूरत गाना उसकी, ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी, तो ए तुसां दे, ठीक है, ए तुसां दे, राइट ये थी हमारी बहुत ही प्यारी बहना और बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अख्तर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत थोड़ी देर के बाद आपके लिए गीत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें याद किया और आप फ़ोन करती रही और इस आवर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अपने अमीन जी का ख्याल रखें और यहाँ पर हमने करना है न्यूज़ ब्रेक। कीप इट लॉक्ड विद सुनहरा रेडियो।
4: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
5: Sky News Centre at 10. England have been trying to get past holders Argentina to reach the World Cup final for the first time since 1966. Joe Rawson is in Atlanta.
6: It looks like it's going to be 60 years of hurt and counting for England after another comeback from the brink by the holders. Anthony Gordon had the three lines ahead, but Enzo Fernandez equalised on 84 minutes. And then in stoppage time, Lautaro Martinez headed in from a messy cross. Argentina once again the thorn in England's side when it comes to World Cup knockout matches. We're deep into added time. It's England 1, Argentina 2.
5: Keir Starmer has set out his achievements in government during his final Prime Minister's questions. He said under his leadership there have been improvements to the NHS and investment in tackling child poverty. The outgoing PM says he's proud to leave the country better than he found it, and he received a standing ovation from hundreds of MPs as he left the dispatch box.
7: To all those in the gallery and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
5: The Metropolitan Police say a man has been arrested on suspicion of sending threatening communications to a Member of Parliament. Reform UK says a threat was made on social media in May to shoot Nigel Farage. Two asylum seekers have been jailed for raping a woman on Brighton Beach in October. Ibrahim Al-Shaif from Egypt and Abdullah Al-Mahdi from Iran were each sentenced to 21 years at Hove Crown Court. From September, police officers in England and Wales will get a 3.5% wage rise, but it's 0.4% lower than the increase recommended by a pay review body. And visiting museums and heading to the cinema could apparently help delay our biological ageing. Researchers claim it can be comparable to frequent exercise. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
8: Sunrise Radio Network News.
9: A second man has been arrested over the attempted murder of a man who was shot in Bradford. A 21-year-old from Bradford was arrested on Tuesday in connection with the shooting on Gaythorne Road in West Bowling on the 8th of July. The 28-year-old victim remains in a critical condition in hospital after suffering a gunshot wound to the head. A 35-year-old man also remains in police custody, while detectives continue to appeal for information to trace 24-year-old Lukman Khan, who is wanted in connection with the investigation. Nine schools across the Bradford district have been recognised for their work supporting children's mental health and well-being. The Bradford Healthy Minds Chartermark Awards celebrated schools that have made emotional well-being a priority. Farfield Primary School and Nursery, along with Jamiatul Imam Mohammed Zakaria, received the top Beacon School status. Swain House Primary School and St. Joseph's Catholic Primary School in Keighley achieved gold awards, while five other schools received silver recognition. Bradford Council says the awards highlight the importance of creating supportive environments where young people can thrive. A Leeds man is due to appear before Leeds Crown Court charged with murder. 27-year-old Hayden Clark of Holton Moor Road is accused of murdering 43-year-old Mark Shaw. Mr. Shaw suffered critical injuries during an assault in Seacroft on the 9th of July and died in hospital 4 days later. Clark first appeared before magistrates charged with causing grievous bodily harm, but that charge has since been upgraded to murder. Police say their investigation is continuing. This is Sunrise Radio News with James Hawksworth. Calderdale Council says it's committed to securing the long-term future of the Shea Stadium in Halifax. Following businessman Ken Davies' decision to withdraw his interest in buying the ground, a council task group has been set up to review its future. Three proposals have already been received, including plans for a community trust and a not-for-profit organisation to run the stadium. The council says there are no plans to withdraw from operating the Shea, with a final decision expected in October. That was Sunrise Radio News.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. Bob, you could hear some of those. And it's very sad news because England are lost today, and Argentina was 2 and England 1. And that means England are out, and that is the story. And yes, in the final is going to be Argentina with Spain, or Spain and Argentina will be playing in the final next Sundays. And today's match, as you know, Argentina has won 2-1, and that is all about. And it is a bit of sad news for me and for everybody else, maybe who likes football. Anyway, England are coming back home. That's why it is, and it is a bit of sad news. Anyway, you have your pesh karna hai, hit of the hour, enjoy the track.
10: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम बॉबी, शुक्रिया सब दोस्तों का। और यहां पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 8 minutes past 10 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. And say that, friends, bahut bahut shukriya. Aapke bhi aap koshish kar rahe hain phone karne ki, thodi der ke baad aap phone karenge. And I will happily take your calls on Rana Navi Shab, thodi der ke baad aap bhi kam phone karenge. Bahut bahut shukriya aapke bhi. Aur Abdul Qayyum Shab, aapke bhi shukriya da karta hoon. Aur Shukran Bhai, bahut bahut shukriya aapke bhi. Shimi Ji, bahut bahut shukriya aapke bhi. Chaudhary Khar Bhai, aapke shukriya da karta hoon. Aur yahan bhi mara saath hai. और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अतिका साहिबा हैं हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी
2: जी, तो कुछ शायरी है।
0: जी जी, अरशाद अरशाद। जी जी, बिस्मिल्लाह करें।
2: वो मुझको लिखता था हमदम,
0: वाह,
2: जुदाइयों की उदास रुत में खफा ना होना।
0: आह क्या कहने।
2: वो मुझको लिखता था ऐ हमदम, जुदाइयों की उदास रुत में खफा न होना।
0: वाह।
2: मैं लौट आया तो कुर्बतों के हसीन मौसम में दिल का आंगन संवार दूंगा। मैं लौट आया तो कुर्बतों के हसीन मौसम से दिल का आंगन संवार दूंगा, बहार इसमें उतार दूंगा। मैं लेके आऊंगा साथ अपने मोहब्बतों के गुलाब मौसम।
0: वाह वाह वाह।
2: मैं लेके आऊंगा साथ अपने मोहब्बतों के गुलाब मौसम, वफा में डूबे ऐसे माब लम्हे तुम्हारी खातर, मगर वो ना आया। वो अज़र लाया, जवाज लाया, वजाहतों के महाज लाया। मैं जिन दुखों की इंतहा पर था वो फिर से उनका आगाज लाया। वो मुझको लिखता था है हमदम, जिदाइयों के उदास रुत में खफा न होना।
0: वाह जी वाह।
2: दिले गुमशुदा कभी मिल जरा।
0: वाह।
2: दिले गुमशुदा कभी मिल जरा किसी खुश खाक के ढेर पर, या किसी मकान की मुंडेर पर। दिले गुमशुदा कभी मिल जरा,
0: वाह,
2: जहाँ लोग हों उसे छोड़कर किसी राह पर, किसी मोड़ पर।
0: वाह।
2: दिले गुमशुदा कभी मिल जरा, मुझे वक्त दे, मुझे वक्त दे, मेरी बात सुन, मेरी हालतों को तो देख ले। मुझे अपना हाल बता कभी, कभी पास आ कभी मिल सही। मेरी हालतों को तो देख ले, मुझे अपना हाल बता कभी, कभी पास आ कभी मिल सही।
0: वाह वाह, क्या कहने।
2: मेरा हाल पूछ बता मुझे, मुझे मेरे किस गुनाह की सजा सुना, मेरे किस गुनाह की सजा है ये, तू जनून साज भी खुद बना।
0: वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
2: मेरी वजह इश्क यकीन तेरा, मेरा यार भी तो तेरे सबब।
0: वाह क्या कहने।
2: वो गया तो तू भी चला गया, दिले गुमशुदा ये वफा है क्या। इसे किस अदा में लिखूं बता, ऐ किस्मतों का सफ़र लिखूं। उसे किस अदा में लिखूं बता, इसे किस्मतों का समर लिखूं, या लिखूं मैं इसको दगा सजा। दिले गुमशुदा कभी मिल जरा किसी खुश्क खाक के ढेर पर, या किसी मकां की मंडेर पर।
0: वाह जी वाह।
2: दिले गुमशुदा कभी मिल जरा, जहां लोग हों उसे छोड़कर किसी राह पर, किसी मोड़ पर। दिले गुमशुदा।
0: वाह जी वाह।
2: मेरा हाल पूछ बता मुझे, ये किस गुनाह की सजा है, तू जनून साज भी खुद बना, मेरी वजह इश्क यकीन तेरा।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: मिला यार भी तो तेरे सबब, वो गया भी तो तू भी चला गया।
0: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
2: मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने। वाह।
2: सरे आई ना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और है।
0: वाह।
2: मैं किसी के दस्त तलब में हूँ, तू किसी के हरफे दुआ में हूँ। तू किसी के हरफे दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: अजब इतबारो बेतबारी के दरमियां है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है।
0: वाह वाह।
2: मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर
0: वाह।
2: तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है?
0: क्या कहने, बहुत खूब।
2: तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है? मुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकिया कोई और है। वही मुनसनों की रवादातें, वही फसीलों की इबारतें।
0: वाह वाह वाह।
2: मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना इन्हें गौर से।
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
2: जिन्हें रास्ते में खबर हुई ये रास्ता कोई और है।
0: वाह वाह वाह।
2: मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
0: वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब।
2: अरे आई ना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और है।
0: बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला।
2: मुझे है अजलत, तुझे है शिद्दत, में हमारी फितरत मिली हुई है। कभी ये रहमत कभी ये जहमत, ये कैसी सोबत मिली हुई है।
0: वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब।
2: किसी से निस्बत किसी से चाहत, ये कैसी तेरी अजब रफाकत। किसी से निस्बत किसी से चाहत, ये कैसी तेरी अजब रफाकत।
0: वाह।
2: किसी को सूरत किसी को सीरत, किसी को किस्मत मिली हुई है। किसी को सूरत किसी को सीरत, किसी को किस्मत मिली हुई है। इसे ये कह दो कभी ना आए, जहाँ रुका है वहीं रुके वो। मुझे शिकायत इसे नदामत, किसी को जन्नत मिली हुई है। मुझे शिकायत इसे नदामत, किसी को जन्नत मिली हुई है। मेरी समझ से ये बाला तर है, तेरी वजाहत तेरी दलीलें।
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
2: तेरी रवायत तेरी अकीदत तेरी शरारत मिली हुई है। तेरी रवायत तेरी अकीदत तेरी शरारत मिली हुई है। ये तिशगनी एक शगस्तगी है, मगर तू मेरी जिंदगी है। गुमा को जहमत अमीद राहत, हमें ये मोलत मिली हुई है।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: हमें अदावत नहीं किसी से, किसी से हमको गिला नहीं है। हमें अदावत नहीं किसी से, किसी से हमको गिला नहीं है।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: तेरी फसाहत मेरी जहानत, हमें ये नेमत मिली हुई है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: तेरी वजाहत मेरी जहानत, हमें ये नेमत मिली हुई है। गजब की मोजे चमकते साहिल, मिजाजे कश्ती अता अलग है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: गजब की मोजे चमकते साहिल, मिजाजे कश्ती अता अलग है। वजूदे इबरत सजूदे राहत, ये कैसी हिकमत मिली हुई है।
0: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। वाह।
2: मुझे है अजलत तुझे है शिद्दत, हमारी फितरत मिली हुई है। कभी ये रहमत कभी ये जहमत, ये कैसी सोबत मिली
0: हुई है। हाय हाय क्या कहने,
2: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे मोहतरम हैं भाई हैं दोस्त हैं अली भाई, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और रज़िया चौधरी साहिबा हैं जो मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करें, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत
0: बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका, बहुत प्यारा अंदाज़, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत रब रखा, अल्लाह हाफिज़। राइट, दैट वाज अतीका साहिबा, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हैं भाई हैं दोस्त हैं, जितनी मैं तारीफ करूँ कम है। और ये हैं हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज़, हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए जी। और यहाँ पे उनके वेलकम जी आए, खुश आमदीद कहूँगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे तबीयत है मेरे भाई की? अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो वैसे दुख भी हो रहा है, मलाल भी हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड हार गई आज। इंग्लैंड हार गई है,
3: कोई नहीं ऐसी बात
0: है। ऐसी बात नहीं है, इंग्लैंड हार गया, कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जी।
3: क्रिकेट में भी आ रहा
0: है। हाँ ऐसे ही मैं कहने वाला था, मैंने कहा वो आजकल कोई थोड़ा जा क्या करें क्या करें, चलो कोई ये थोड़ा मैच थोड़ा क्रूशल था, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं जी।
3: तो आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र शुक्र और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे मोहतरम में हमारे डॉक्टर मलिक साहब हैं, वो उमरा के लिए सदर के लिए गए हुए हैं माशाल्लाह। उन्होंने आपके लिए खुश खुशी दुआएं की हैं, सब के लिए दुआएं की हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह
3: अपने ये वाजिब भाई की बर्थडे थी आज।
0: मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे बताया था, वो तो कहते हैं अभी डेव कहते हैं बर्थडे आज, पता नहीं। मेरे ख्याल में सही जो बर्थडे उनकी मेरे ख्याल में 22 की है, मेरे ख्याल में जुलाई की। तो मेरे ख्याल में वो अब आज से वो शुरू कर रहे हैं आपकी बर्थडे माशाल्लाह। तो पता नहीं सही बर्थडे उनकी कब है, पता नहीं। इसका मैं पूछूंगा जब नेक्स्ट प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे तो उसमें पूछ लूँगा कि एग्जैक्टली डेट क्या है, कौन सी डेट। मेरे ख्याल में 22 है जुलाई की।
3: चलो कोई बात
0: जी।
3: सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: अबू बिलाई हैं, वाजिद भाई हैं
0: जी,
3: मलिक साहब तो गए हमरे पे
0: जी जी माशाल्लाह।
3: अयूब भाई हैं, मुदस्सर भाई हैं
0: जी,
3: चौधरी मुजफ्फर साहब, तारक सुरफी साहब है, फरियाद चौधरी साहब,
0: वाह,
3: जितन भाई चौधरी नीम साहब है
0: जी,
3: खान राय अतर सैन साहब है
0: जी,
3: आदर सेल अख्तर है, अब्दुल कयूम साहब है
0: जी,
3: नदीम मंसूर साहब आए थे
0: जी,
3: अबरेज भाई
0: जी,
3: सतारा साहब आए, अतीका जी आए थे माशाल्लाह
0: जी,
3: सुमित्रा बहन
0: जी,
3: उसाना साहब, मैं कुलसीम साहब आए
0: जी,
3: और भी जितने सुनवा साहब को मैं दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, और स्पेशली अपने उन्होंने फ़ोन किया शबरेज भाई ने आपको सलाम पेश कर उन्होंने किया था माशाल्लाह पिछले ओवर में।
3: वालेकुम सलाम
0: जी।
3: तो एक ओश तिरमजी है, उनकी गजल है छोटी से
0: जी जी अर्शाद।
3: देखे हैं जो गम दिल से बुलाए नहीं जाते,
0: हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब वाह।
3: देखे हैं जो गम दिल से बुलाए नहीं जाते,
0: हाय हाय,
3: उम्र हुई याद के साए
0: नहीं जाते, हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने, लाजवाब।
3: अश्कों से खबरदार के आंखों से ना निकले,
0: वाह वाह,
3: अश्कों से खबरदार के आंखों से ना निकले, गिर जाएं ये मोती तो उठाए नहीं जाते,
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
3: शुक्रिया
0: वाह।
3: और जुम्बशे दामाने जुनून जाने अदब है,
0: वाह वाह वाह,
3: इस राह में आदाब सिखाए नहीं
0: जाते, वाह बहुत खुश को मुकर्रर करेंगे, वाह वाह वाह क्या कहने, चोटी का शहर है, वाह वाह वाह।
3: हर जुम्बश दामाने जुनू जाने अदब है, इस राह में आदाब सिखाए नहीं जाते, हम भी शबे गैसू के उजाले में रहे हैं,
0: हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह,
3: क्या कीजिए दिन फेर के लाए
0: नहीं जाते, वाह वाह वाह वाह।
3: शिकवा नहीं समझाए कौन चारा घरों को,
0: हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब वाह।
3: नहीं समझाए कौन चारा घरों
0: को,
3: कुछ जख्म है ऐसे के दिखाए
0: नहीं जाते, आए आए आए क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब वाह।
3: दस्ते जफा सर हैं ये अरबाबे वफा के,
0: आए हाय
3: वाह, दस्ते जफा सर हैं ये अरबाबे वफा के, कट जाएं तो कट जाएं झुकाए नहीं जाते,
0: आए हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
3: आखिरी शेर कहते हैं, ए होश गमे दिल के चरागों की है क्या बात, ए होश गमे दिल के चरागों की है क्या बात, एक बार जला दो तो बुझाए
0: नहीं जाते, आए हा हा हा वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या कहने,
3: शुक्रिया
0: वाह वाह, कमाल कर दिए कमाल कर दिए, ब्यूटीफुल, भी एक और हो जाए इस खुशी में, एक और हो जाए।
3: ये नातिक गुलाउटी इनका नाम है
0: जी जी जी,
3: आपने सुना है,
0: हाँ सुना है, मेरे ख्याल में इनका जो तल्लक है वो इंडिया का तल्लक है जी जी।
3: वो कहते हैं, किसको मेहरबान कहिए कौन मेहरबान अपना,
0: वाह,
3: किसको मेहरबान कहिए कौन मेहरबान अपना,
0: वाह वाह,
3: की ये बातें हैं वक्त अब कहाँ अपना,
0: हाय हाय हाय क्या कहने जी, वाह जी वाह क्या कहने, वाह।
3: अब जहां में बाकी है आह से निशान अपना,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
3: उड़ गए सब बादल रह गया धुआं अपना,
0: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ए खुदा जिला सुन ले हमारी बेकरारी का,
0: हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब माशाल्लाह।
3: आज हाल कहता है एक बेजुबान,
0: हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
3: सो के रात काटी है बेकसी के पहलू में, सो के रात काटी है बेकसी के पहलू में, चांदनी ने देखा है मेरे घर समा अपना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
3: हम सफर के किस्से को खत्म करके चलते हैं, रास्ता बदलती है अब अपनी दास्तां अपना।
0: हाय हाय हाय, कमाल कर दिया, कमाल, ब्यूटीफुल, वाह।
3: ना मुराद दुनिया में रह के खूब भर पाए, चल निकल चलो इस दिल कुछ नहीं, चल निकल चले है दिल कुछ नहीं यहाँ अपना।
0: हाय हाय हाय बाबा।
3: घर तो अब भी दुनिया के धूप में बनते हैं,
0: वाह।
3: क्यों उठा नहीं लेता साया आसमान अपना।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी, वाह, क्या कहने।
3: आखिरी शेर भाई।
0: जी जी जी।
3: जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को,
0: वाह वाह वाह वाह।
3: जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को, ढूंढते फिरे जाकर किस लिए मकान अपना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कमाल कमाल, ब्यूटीफुल, वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पाए की शायरी, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि क्या कहेंगे बाप के बारे, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है। और महफल तो माशाल्लाह हमेशा ही लूटते हैं और आज भी लूट लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने फूल भेजे हैं, आदर्श सुहेल अख्तर साहब हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो आपका शुक्रिया अदा करें, दो हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करें, उन्होंने मौजी भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पसंद की है पाए की शायरी, बहुत खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा हम कलाम होंगे संडे की शाम, और आपके नाम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमारा साथ दे रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और हमारे जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, क्योंकि अब्दुल कयूम साहब इनकी जो शायरी है और इनके जो गीत हैं, ओए होए होए होए होए, सदके जावा कुर्बान जावा इन पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी।
4: वो पिछले दिनों मेरा एक दोस्त जो है वो हमसे बिछड़ गया।
0: ओ अल्लाह,
4: मैं उधर बिजी रहा हूँ।
0: इन्निल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की मर्ज़ी।
4: दोस्त था।
0: हाय हाय हाय हाय।
4: बहुत प्यारा दोस्त।
0: और हमने यहाँ पे आपको पकार की आपके लिए, हमने दुआएं की आपके लिए माशाल्लाह, और ऐसा ही था। और काफ़ी दोस्तों ने आपको पूछा भी है कि कहाँ चले गए, तो मैं माजत चाह रहा हूँ आपसे भी, और मुझे नहीं पता था, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। जी,
4: तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त घरों में, दुकानों, बाजारों, कहीं भी ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, मैं सबको सलाम अर्ज कर। आज गला पता नहीं क्यों कुछ थोड़ा सा बैठा हुआ है।
0: कोई कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत आपकी खूबसूरत आवाज आ रही है।
4: जो दुनिया फानी से चला गया
0: जी,
4: उसके नाम है ये गजल छोटी सी।
0: जी जी जी।
4: धूप के साथ गया साथ निभाने वाला, धूप के साथ गया साथ निभाने वाला, अब कहाँ आएगा वो लौट के जाने
0: वाला। हाय हाय,
4: धूप के साथ गया साथ निभाने वाला, अब कहाँ आएगा वो लौट के जाने वाला। और रेत पर छोड़ गया नक्श हजारों अपने, रेत पर छोड़ गया नक्श हजारों
0: अपने,
4: किसी अनजान की तरह नक्श मिटाने वाला।
0: हाय हाय, क्या कहना।
4: रेत पर छोड़ गया नक्श हजारों अपने, किसी अनजान की तरह नक्श मिटाने वाला। और खुश्क शाखें कभी ऐसे तो नहीं चीखती हैं, खुश्क शाखें कभी ऐसे तो नहीं चीखती हैं, कौन आया परिंदू को डराने वाला।
0: हाय हाय हाय।
4: और आर्द्र शाम की सुर्खी ने कहा किया फाश उसे, आर्द्र शाम की सुर्खी ने किया फाश उसे, पर्दा अब्र में था आग लगाने वाला, मुझको दर पर्दा सुनाता रहा किस्सा अपना।
0: हाय हाय,
4: मुझको दर पर्दा सुनाता रहा किस्सा अपना, अगले वक्तों की हकायात सुनाने वाला।
0: हाय,
4: शुक्रिया जनाब, मुझको दर पर्दा सुनाता रहा किस्सा अपना, अगले वक्तों की हकायात सुनाने वाला। और सफरे शब का तकाजा है कि तेरे साथ रहूं, सफ़रे शब का तकाजा है कि तेरे साथ रहूं, दश्त पुर होल है तूफान है आने वाला।
0: हाय हाय,
4: सफरे शब का तकाजा है कि तेरे साथ रहूं, दश्ते पुरहोल है तूफान आने वाला, और शाखें घास गने फूल उबर लरसती किरने है, कोई कौन खजानों को लुटाने वाला। और आखिरी शेर है,
0: जी जी जी,
4: जब अब तो आराम करें सोचती आंखें मेरी, अब तो आराम करें सोचती आंखें मेरी, रात का आखिरी पैर भी है जाने
0: वाला। हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, और हमारी तरफ से भी, और अल्लाह की मर्जी, सर बस दुख हुआ है बस सुन के, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी।
4: दुनिया फानी
0: जी, भाई भाई बड़ा दुख हो रहा है, बहुत बस दुनिया जाना जाना रहा है, और दुख लगता है मेरे भाई, क्या कह रहे हैं, बस सुबह अल्लाह के हम दुआई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपने खेल का ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी दुख हो रहा है। और ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब, बिलीव करें कि बड़ा ही दुख होता है, बिलीव करें कि कोई दुनिया से चला जाता है और आने जाने के, और हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको कायम दायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अब्दुल कयूम साहब, बहुत ही हमारे मौजूद मेहमान हैं और हमारे बहुत प्यार करने वाले, बिलीव करें हम इनसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि देखो फिर भी वो आए और प्रोग्राम में शिरकत की है। अल्लाह पाक मिशन को खुश शुक्रिया शादाबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा। और सईद अहसान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप आएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे मोहतरम हमारे भाई हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, ये हैं सईद अहसान साहब हैं, और वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे, हमारे हमारे मोहतरम हमारे भाई हैं। और कैसी तबीयत है मेरे भाई की? अल्लाह पाक का शुक्र, शुक्र करम है। और आपका गाना मैं सुन रहा था, और क्या क्या खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया था वो मिल्टन कीन में, और जो आपने महफिल की है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार गीत था, वेरी नाइस। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, देखो आप जो ना, आपको तो बहाना चाहिए कोई पार्टी करने के लिए। यू लिव इन योर लाइफ, यू आर लिव इन योर लाइफ, माशाल्लाह, ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही। और आप क्या लेके आए हमारे लिए, क्या लेके आए आज?
5: आपके लिए आज बहुत अफसोस की बात है कि इंग्लैंड हार गया है।
0: बिलीव करें कि आई वाज सो हैप्पी व्हेन दे वर विनिंग 1-0, तो मैंने कहा कि वाओ, दे ओनली गो 10 मिनट्स टू गो, पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ, कुछ दे लॉस्ट टू 1, और अनफॉर्चुनेटली बस क्या करें, क्या करें,
5: It's a game,
0: but you know, they were played very, very well, and they played superb. You know, I mean, because they scored the first goal, and for some reason they could never hold that. You know, that's what it is all about. चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, चलो anyway.
5: क्या है दुनिया में ये अफसोस, तो कहते हैं दुख सुख चलता रहता है।
0: जी जी,
5: ये गाना जो है रफी साहब का गाना है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ इन पाकिस्तान आगा मुबीन का नाम है, उसका फेवरेट गाना ये वाला।
0: हां हां, गो अहेड, जी जी,
5: प्लीज एंजॉय करें,
0: जी जी। यहां भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम सईद अहसान जी हैं, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
4: जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने,
0: हाय हाय हाय,
4: कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, ऐसे न थे हम,
0: क्या कहने,
4: हो सकता है तुमने जो देखा हो, सनम तुम्हारी
6: नजरों का धोखा हो दिल से न दूर करो यार हमें हमने किया है प्यार तुम्हें हो सकता है तुमने जो देखा हो तुम्हारी नजरों का धोखा हो एक जरा सी बात पे क्या क्या बात बनाई लोगों ने कुछ तुमने कुछ तुमने

0: Güzel. Batu.
1: ठोकर में से दिल को लिए तोड़ के तुम तो चल भी दिए।
0: ब्यूटीफुल।
1: ठोकर में से दिल को लिए तोड़ के तुम तो चल भी दिए, चल भी दिए तुमको खबर क्या शहर में उस दिन ईद मनाई लोगों ने। कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने।
0: क्या कहने,
1: ऐसे न थे हम।
0: वाह वाह वाह वाह, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. You know what? Amazing. You know what? You are all rounder, mashallah. और जो भी गीत है आपको शूट करते हैं, believe करें. You know what? Any track that you have, I've heard your tracks and I've seen your tracks as well. You know what I mean? And they are mind blowing. It looks like that you are physically singing yourself. You know what I mean? Because last track you sung in Minter Keen में, wow, what a tune, what a tune.
2: मैं कहता हूँ कि या मैं सही गा रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये फिक्र होती है.
0: नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारा. यू नो, आई कुड सी द ऑल द पीपल, ऑल द ऑडियंस, आई मीन योर फैमिली, दे वर एंजॉयिंग इट माशाल्लाह. दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग.
2: वो पता इतना मुझे सपोर्ट करते हैं भाई.
0: जी जी, वाह वाह, अमेजिंग. ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सुनने वाले जो हाँ भाई माशाल्लाह बहुत हमेशा ही सपोर्ट करते हैं आपको, हम भी सपोर्ट करते हैं और हम आपका इंतजार करते हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे. और हमें आपको बुकिंग करनी पड़ती है कि आएंगे आएंगे. और बुकिंग, आई होप यू नॉट गोना, यू नॉट गोना चार्ज मी फॉर बुकिंग, यू नो. नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी रोज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, डेफिनेटली इंशाल्लाह. और एंड यू नो, यू नेवर नो, वी माइट कैच अप सम टाइम. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने मुझे कीमती वक्त दिया, अवेलेबल टाइम. एंड यू नो व्हाट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर टाइम माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. एंड थैंक यू वेरी मच, हमारे बाबी जान को भी सलाम पेश करना है हमारी तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. वाओ, ब्यूटीफुल, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. वाओ, ये थे हमारे सईद एहसान साहब. और व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ही लिविंग हिज लाइफ ब्यूटीफुल, एंजॉयिंग हिज लाइफ एज वेल. एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इज एंजॉयिंग लाइफ एंड इज हैप्पी विद हिज फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स. एंड ही इज ऑलवेज एंजॉयिंग द पार्टीज हियर एंड देयर एंड देयर एंड हियर एंड ऑल्सो ऑन सुंदर रेडियो एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा. और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, अल्लाह पाक मिशन को खुश रखे. राना नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
3: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: ओ हुजूर, कैसी तबीयत है? वो ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
3: जी बिल्कुल, अल्लाह का करम करम है जी. आप सुनाइए, आप कैसे?
0: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र है, हमने आपको पुकारा और पुकारते रहे और हमेशा ही पुकारते हैं आपके लिए. और ये क्या कहने, क्या कहने, कहने. और आप छा गए मेरे भाई, आपके जो जो फन फॉलोज है बहुत बड़ी है माशाल्लाह. हमेशा ही हाल वाल आपका, पिकार करना, बुलाना, दावत देनी आपको, आए हाय, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप हवा के दोस्त.
3: आज इत्तेफाक हुआ है कि मैं मतलब कॉल मिलाते ही जो है ना,
0: क्योंकि आप हमारे भाई साहब चले गए ना, चौधरी फरियाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं वो भी, और माशाल्लाह आप आए और मुझे खुशी हुई है कि आपने
3: चौधरी साहब को लेके जाए ना, जो सब पहले से मौजूद हैं तो उनको आने दें.
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया.
3: तब तक मैं आप बिल्कुल इंतखाब भी करूँ.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे हमारा साथ चौधरी फरियाज साहब, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, तुम्हें राना नवीद साहब को सलाम पेश करने ने, तो आने ने तुम पहले लेके जाओ. हाँ आप हवा के दोष में, पहले दुनिया सुनने पे ने, राना साहब ही आए गए ने, राना साहब पुलिस आई गए.
4: शुक्रिया, ठीक है मैं
0: जनाब।

0: कई कसूर जरूर हसन करके माफ कर नजरे मंजूर मैनो
1: वाह
0: इश्क़ एको ही करदा फरियाद अंसी बख्शो हुस्न दा सजा सरूर मैनो
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
0: अखिया जिल रोंदा ते करदा फरियाद जारी
1: हाय हाय
0: जिल रोंदा ते करदा फरियाद जारी अखियां दर्द गईया हुन ते आ सजना
1: वाह
0: रेया की हुन मेरे वजूद अंदर
1: वाह वाह
0: रेया की हुन मेरे वजूद अंदर बे दीदार ना और तड़पा सजना
1: वाह वाह वाह वाह
0: बे दीदार जने केड़ा मुड़ लगदा जे कोई गल ते खोर सुना सजना तू है मालिक मुख्तार गुलाम अनफे नजरे करम दी जरा फरमा सजना
1: वाह जी वाह जी वाह जी वाह
0: अखिया जिसनु हर वेले तकदा दिल मेरा जिसनु हर वेले तकदा दिल मेरा गा बगा होती जरूर तकदा लू लू ते सारी होने वाला मैं दे विच सुरूर और नूर तकदा
1: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत
0: खूब दूरी भी नहीं महसूस होती नजर विच जे नजरे मंजूर तकदा तकदा हुई हमेशा हुन यार अंती ओ बिना आंख जड़ा नेरे दूर तकदा
1: वाह वाह क्या कहने क्या कहने
0: अखिया दुखी दिल तो दुखी दिल तो पूछया जिस पीछे सदा आए भरना है कदे तकिया ही जिसिया अदब अदाब दे नाल दरदा गला नित पिया करना है कदे तकिया ही
1: वाह वाह क्या कहने
0: जिदी खातरी जालिनी जफर है दे नारे दुख जरना है कदे तकिया ही अनफी दस सानो जिस यार पीछे कोई जी जी मरना है कदे तकिया
1: ही हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने
0: अखिया एक बार जो अखियां तकिया सी
1: हां
0: एक बार जो अखियां तकिया सी उसकी चलक ना फेर नसीब हुई
1: वाह
0: उसे जीद से ही शहीद किया खेल दिल दे नाल अजीब हुई
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: उसे दिन तो दिल बादशाह बनया उसे दिन तो दिल बादशाह बनया उसे रात तो अक्ल गरीब हुई
1: वाह
0: दिल से यार मैनू जरूर अनसी और जिसके पीछे दुनिया रकीब हुई
1: हाय हाय हाय हाय हाय चौधरी साहब वाह मन गया चौधरी साहब मन गया दूरू फोन करने पढ़ना चाहने एक और पढ़ सकने कोई मसला नहीं जी चलो चलो ठीक है बड़ी मेहरबानी सर बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश है बड़ी मेहरबानी सर बड़ी अल्लाह सोने ने वाला तुम आए हो तो बड़ी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया और ये थे हमारे चौधरी फरियाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे शायद बाद रखे और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई राना नवीद साहब वेलकम कहेंगे जिया कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू राना साहब मेरे ख्याल राना साहब चलेंगे
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू
1: माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह देखो तुम आए हो तो कितनी लाइन यहाँ पे फ्लश हो रही है क्या कहने जी बात है वेलकम करने पे ने तो बड़ी खुशी हुई है तो और आपने सुनाओ
2: जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया तो चौधरी साहब आए बड़ा अच्छा लगा
1: चौधरी साहब ने आपके लिए उन्होंने कहा कि मेरा टाइम उनको दे दें
2: बहुत मेहरबानी चौधरी साहब की बल्कि हम चौधरी साहब को सुनते तो अच्छा था जरा महजूर हो गए थे बड़ा
1: नहीं चौधरी साहब उन्होंने कहा कि बड़े दिनों के बाद मेरा दोस्त आया मेरा वीर आया तो उनको दे दे मेरी जो चांसेस
2: आपके इसरार पर और कोशिश तो करते हैं लेकिन बस आज फिर मेरी तो मैंने
1: जरूर वाह जी वाह क्या कहने क्या कहने
2: आपकी महफिल में हाजिरी लगवा लेते हैं तो आप हम वक्त जाया किए बगैर आपकी नजर
1: जी जी अरशाद
2: पहले तो मसूद अख्तर साहब के चंद शेर आकर ले जाए मेरी आंख का पानी मुझसे
1: हाय हाय
2: आके ले जाए मेरी आंख का
1: पानी मुझसे
2: क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे
1: हाय हाय
2: और गोश्त नाखून से अलग करके दिखाया मैंने
1: वाह वाह
2: गोश्त नाखून से अलग करके दिखाया
1: मैंने
2: पूछे थे उसने जुदाई के मानी मुझसे
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह
2: पूछे थे उसने जुदाई के मानी मुझसे और तेरी खुशबू की लहर पर मैं बड़ा तन्हा था रो पड़ी मिलके रात की रानी मुझसे
1: वाह क्या कहने जी राना साहब वाह जी वाह कमाल
2: शुक्रिया पर रेजा खत्म होने लगा जब खून भी अश्कों की तरह खत्म होने लगा जब खून भी अश्कों की तरह कर गए मेरे ख्वाब नकल मकानी मुझसे
1: हाय हाय हाय राना साहब कमाल कमाल कमाल राना साहब वाह
2: शुक्रिया परवेज भाई सिर्फ एक शख्स के गम में मुझे बर्बाद ना कर
1: हाय हाय
2: सिर्फ एक शख्स के गम में मुझे
1: बर्बाद ना कर
2: रोज रोते हुए कहती है जवानी मुझसे
1: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह
2: रोज रोते हुए कहती है जवानी

0: से, और शेर अब आपकी नजर करता हूँ, एक है फजल गिलानी साहब।
1: जी जी अच्छा,
0: ये भी आपकी नजर खास जरा मुनफरिद अंदाज है।
1: आए क्या कहने क्या कहने,
0: बदन का रम समझ रूह का इशारा समझ।
1: वाह,
0: बदन की रम्ज समझ रूह का इशारा समझ, मुझे समझ ना समझ दुख मेरा खुदा।
1: आए हाय, इसको दोबारा मुकर्रर जी मुकर्रर, क्या कहने। वाह,
0: बदन की रम्ज समझ रूह का इशारा समझ,
1: वाह वाह,
0: मुझे समझ ना समझ दुख मेरा खुदारा समझ।
1: आए हाय हाय हाय हाय,
0: तुझे हम और किसी का ना होने देंगे कभी।
1: वाह,
0: तुझे हम और किसी का ना होने देंगे कभी, तू भाग गया है हमें खुद को अब हमारा समझ।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई क्या कहने।
0: तू भाग गया है हमें खुद को अब हमारा समझ, और जो तीरगी में तुझे कुछ दिखाई देता नहीं, जो तीरगी में तुझे कुछ दिखाई
1: देता नहीं,
0: समझ में आए तो इसको भी एक नजारा समझ।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह,
0: समझ में आए तो इसको भी एक नजारा
1: समझ। वाह,
0: नहीं तो वक्त ही समझाएगा तुझे एक दिन।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: नहीं तो वक्त ही समझाएगा तुझे एक दिन, मैं चाहता हूँ मेरी बात को दोबारा समझ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह
0: ओके, मैं तो अपने भी कुछ काम आ नहीं पाया।
1: हाय वाह,
0: ये किसने कहा था मुझे सहारा समझ,
1: सहारा समझ। हाय हाय हाय हाय, राणा जी कमाल।
0: और शायद ये आखिरी शेर लिखते हैं कि ये कारगाह तिलिस्मात है यहाँ सैयद।
1: वाह,
0: ये कारगाह तिलिस्मात है यहाँ सैयद, खसारा नफा समझ, नफा को खसारा समझ।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब,
0: की रम्ज समझ रूह का इशारा समझ, मुझे समझना समझ दुख मेरा खुदारा समझ।
1: कमाल करते कमाल करने, कसम से मैं क्या कहूँगा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे शौकत भाई हैं बराफड़ से, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे मोहतरम शहीद एहसान साहब हैं जो आए थे,
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया,
1: वो उन्होंने फूल भेजे आपके लिए, और वो भी गुलाब के फूल भेजे उन्होंने, ताज़े ताज़े फ्रेश फ्रेश, क्या कहने। वाह
0: बहुत शुक्रिया। और प्रवीण सर, मेरा ख्याल अब वक्त हो गया ब्रेक का,
1: अभी ब्रेक आने वाली है, अजान की ब्रेक, अभी थोड़े दो तीन दो मिनट हैं कि और कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, तो या कुछ गुनगुनाना है, गुनगुनाना है दो मिनट में,
0: बस वो गजल के एक दो आपको शेर सुना देते हैं।
1: जी जी,
0: वो इश्क जो
1: आई
0: से रूट गया, अब उसका हाल सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूट गया
1: क्या कहने?
0: अब उसका हाल सुनाए क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया।

0: जो हमसे रूठ गया। मेरा ख्याल है दो ही शेरों पे इत्तेफाक करते हैं परवेज भाई, ये खास आपकी नजर की।
1: जी जी जी जी जी, वाह वाह वाह, कमाल कर।
0: ब्रेक को जो ना आसानी से जो है वो एडजस्ट करें, तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
1: शार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महफिल लूट ली मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया अदा करें। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अली भाई हैं, वो भी हमें फ्लश कर रहे हैं, तो वो आपको वेलकम उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए, और कभी भूलना नहीं मेरे भाई, हमें भूलना नहीं है,
0: हमने भूलते नहीं है, परवेज जी सुनते हैं और आपकी
1: महफिल। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा हम कलाम होंगे संडे की शाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह, क्या कहने, क्या कहने जी। ये थे हमारे राना नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें याद करिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें प्रोग्राम को सुनते रहते हैं, और बहुत बहुत चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर होंगे, हमें क्या करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और एफ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह पाक मिशाम को आपको भी खुश रखे, शादाबाद रखे। हमारे मोहतरम लाला जी हैं बर्मिंघम में, हमारा प्रोग्राम सुनने जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वेलकम जी, एन खुश आमदीद है, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे आपको भी। और मैं कोई कॉल नहीं लूँगा क्योंकि अभी जो ना मैंने अजान पेश करनी है, और यहाँ पे ईशा की अजान पेश करनी है ब्रैडफोर्ड यूके में, और यहाँ पे सम रीज़न यहाँ पे अजान शो नहीं हो रही है, तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि हमने खुद पेश करेंगे, कोई मसला नहीं, कोई वो भाई भूल गया तो इसमें कोई मसला नहीं, हम खुद में हूँ ना, किसका इंतज़ार है, और कोई मसला ही नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लग रहा है कि आपने हमें याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एफ रिमार्क साहब आप भी हमें फ्लैश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने बड़े अदब अदार से, बड़े प्यार के साथ, बड़े खलूस के साथ हमने अजान पेश करनी है, वो ईशा की अजान होगी ब्रैडफोर्ड यूके में। अपने अपने मुकामी टाइम टेबल देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे, और मेरे लिए खसूस दुआ करनी है, और मेरे टीम के लिए दुआ करनी है, मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, बड़े अदब अदार से यहाँ पर अजान ईशा की।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, और आई डू अपोलोजाइज हमारे मोहतरम उन्होंने फ़ोन किया एफ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। गंजम्फर अखलास जी बहुत शुक्रिया आपका, जी आई के बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी आई रन आउट टाइम नाउ, और गीता जी मैं सॉरी आपसे भी क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का, तो आपने थोड़ा जल्दी फ़ोन करेंगे संडे के प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह जल्दी हम लेके जाएंगे आपको भी। बहुत शुक्रिया आपका भी, इंशाल्लाह हमसे मुलाकात होगी अवाके दोष में ऑन संडे इवनिंग। और सिमी जी बहुत शुक्रिया आपके भी, आप हमें फ्लश कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्द आपसे भी मुलाकात होगी अवाके दोष में। ऑन सितारा जी बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल लिसनर्स दैट हैज केम इन टुडे इन माय प्रोग्राम बिटवीन आवर्स 8 एंड 9, 9 एंड 10, 10 एंड 11। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलीव यू नो आई थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना मुझे कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, बिलीव करें नो बॉडीज गॉट टाइम इन दिस वेल दिस टाइम ऑफ द ईयर, दिस टाइम ऑफ द मंथ, दिस टाइम ऑफ द इवनिंग, नो बॉडीज गॉट टाइम, बिलीव करें। और दैट्स व्हाई इज ऑल अबाउट, आपने फिर भी मुझे टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जो कुछ भी नहीं करते हैं वो भी कमाल ही करते हैं, क्या हाल है, और उनके भी पास टाइम नहीं है, जो काम करते हैं उनके पास तो टाइम तो है ही नहीं है, और जो घर में बैठे हुए कुछ भी नहीं करें उनके पास तो टाइम है होना भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं है, ऐसा ही होता है। आई एम थैंक यू वेरी मच आपका भी, थैंक यू वेरी मच सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। नो फॉरगेट ऑल दोज लिसनर्स जो चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनिंग प्रोग्राम को लिसन सुनते हैं, लिसन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आई एम थैंक यू वेरी मच। और शमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी, इंशाल्लाह आपसे भी हम कलाम होंगे डेफिनेटली ऑन संडे इवनिंग। मैं आपसे भी माजर चाह रहा हूँ, आई डू अपोलोजाइज टू यू एज़ वेल, आपने भी कोशिश करती रही कि प्रोग्राम में शिरकत करने की, अनफॉर्चुनेटली कुडन्ट गेट थ्रू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह जल्द आपसे भी मुलाकात होगी हवा के दोष में। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते on a Sunday evening between hours of 8 and 11, where we're going to be having a party in the studio. As always, Allah Hafiz and Shabahir.